0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं एहा होउछि लक्ष लक्ष श्रद्धालुंकर आस्था विश्वास और भक्ति रे भरा दश दिन व्यापी एक महासमागम। यही पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मानकर सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्त दायित्व। से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन हवा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िए दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़ो, जमीक तटका खाद्य खातु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करतु। बाहर खोल में बिक्री होता खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होता खाद्य, माछी बसुवा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदो खातु ना। खाद्य खाइबा पूर्वरु एवं परे तथा शौच हवा परे निज हाथ को साबुन भल भाव धुंतु। शरीर जल शुष्कतारु रक्षा पाइबा आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पियंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करंतु एवं परिष्कार परिच्छन्न रहंतु। अळिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणे तेणे न पकई डस्टबिन व्यवहार कर। जरूरीकालीन सहायता पाई पूरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752221175 रे जोगाजोग करंतु एवं आंबुलांस पाई 108 को कॉल करंतु। जय जगन्नाथ।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा द्वारा जनहितरे जारी।
2: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अति आनंदर कथा आमे वर्तमान देखी पारुचु गोटे सरथा बाले रे गोटे भक्त निजक हनुमान बेसरे सुसज्जित करी अति सुंदर भावरे नृत्य करुछंती। आउ एपटे नाकचणा द्वार जो नाकचणा द्वार अपेक्षा करिछंती केतेबेले महाप्रभु एही पथ देई रथारूढ़ हेबा निमन्ते आगमन करिवे। आउ आमे मध्य देखुचु अति सुंदर भावरे गोटे मठ जो मठर प्रत्येक वर्ष गोटे विराट बड़ धूपकाठी करिथांती महाप्रभुंक सेवारे जो धूप एवं धूप प्रदान करिबा पाई तांकर पथकु सुसमित बा कुसुमित करिबा सहित सुगंधित करि ए वातावरण को आहुरी आनंद पवित्र भूतमय करिबा निमन्ते शरधा बाली जो शरधा बाली होउछंती श्रद्धार बाली जहार स्पर्श रे जो जगन्नाथ कोटि गैबलनाथंकर स्पर्श रे दांडर धूली पवित्र पुण्यमय होइ उठि अछि। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरम। मनीष जीवन रे श्रद्धा हेउची एक अपरिहार्य वस्तु, कारण आम मानक भितरे जदि श्रद्धा रहिब नाही परस्पर प्रति जदि प्रेम रहिब नाही तेबे जीवन जीवन होइ रहिब नाही। सेथि पाई तो प्रभुंकर बड़ भाई बलभद्रंकर रथ जो रथरे रहिछन्ति दुई गोटी सुक पकी जहा होछन्ति श्रद्धा आ विश्वास, कारण प्रत्येक जीव मानक भितरे फल पाइबा जदि आम आपणे न नेबा संसार को समस्त को जदि आमर प्रेम रे आम बांधि न पारिबा तेबे से जीवन आहुरी आगो को बढ़िब नाही। जहाँ भगवान मध्य निजे से प्रेम भावडोरी रे बंदा है जी साठी पौटी भोग को तुच्छ मणि वर्ष को थरे निश्चित भाव यात्रा करुछंती गुंडीचा मंडप को बा गुंडीचा मंदिर को जोठी माँ माटी परिवार बंधु समस्त सहित से श्रद्धा एवं प्रेम को बांटापी आउ ए श्रद्धार प्रेमर स्वरूप आज मध्य अनेक श्रद्धालु भक्त ए सरथा बाली रे आसी पहुंचिछंती तेबे तांको मुखरु सुनिबा से महाप्रभुंक प्रति रहिथिबा तांकर से अनन्य प्रेम भाव अनुभूति को जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
3: आमे प्रतिवर्ष आमे पुरीर जिते नृत्यशिल्पी अच्छु आमे प्रतिवर्ष ठाकुरंकर समस्त जानीयात्रा चंदन यात्रा हो गुआली गुआली माने ठाकुरंकर विवाह उत्सव हो रथयात्रा हो बेलपूर्णमी हो स्नान यात्रा हो आमे सब बेले एई यात्रा मानकर ठाकुरंक आगरे नृत्य परिवेषण करके आसुछु। काहेकि ना आमे भाबु ठाकुरंकठु नाचर आरंभ श्रीमंदिरर नाच कहिले श्रीमंदिर को बुझाए श्रीमंदिरर ठाकुरंक पाखरु ही नाचर आरंभ तेणु आमे समस्ते सेई ठाकुरंक खुशी करिबा ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଏ ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ କରିକି ଠାକୁର ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଠାକୁର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚୁ, ଆଉ ସେ ଭାବ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସେବା ଦେଉଥାନ୍ତ, ଆମେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚ କରୁ।
4: ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ।
5: ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାରଣା, ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଢ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ।
4: ଆପଣ କୋଉଦିନଠୁ ଆସିଲେଣି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଲା?
5: ଆମର ଆଜି ଆସିବାର କଥା, କାଳିଆ ଏମିତି କାଲି ଡୋରି ଲଗେଇଲା ଯେ ଆସିଲୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପହାଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ଚାହିଁ ରହିଛୁ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ।
4: ଆଉ ଏଇଠି କେତେବେଳୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଶରଧା ବାଲିରେ?
5: ଆସିଲାଣୁ 5:30 ଆସିକିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିଲୁ, ଏବେ 6 ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ।
4: ରଥଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ?
5: ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଛୁ
4: ରଥଯାତ୍ରାରେ ବି
5: ଦେଖିଛୁ, ଆଜି ଫେର ବି ଆସିଛୁ ସେଇ ବାହୁଡ଼ାଟା ଦେଖିବାକୁ। ଆର ବର୍ଷ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ, ବାହୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିଲୁନୁ, ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କାଳିଆକୁ ଭଲ ଦିନ ରାତି ସାରା ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ତିନ୍ତି ଦେଖିଲୁ, ସେ ବର୍ଷା ବି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ।
4: ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ଥିବେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ?
5: ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେ ଖୁସି ତ ମାନେ ଆମର ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି କାଳିଆ ନାଁ ଧରିଲା ବେଳକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।
4: ଧନ୍ୟବାଦ।
6: ଏବେ ତିନି ରଥ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କୁନି କଳାକାର ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା।
7: ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତନ୍ୟା ଘୋଷାଲ, ମୋ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି 5, ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି।
6: କିଏ କହିଲେ ତମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ?
7: ମୋ ବାପା।
6: କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଏଠି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ?
7: ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
6: ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବି 2 ଅଛନ୍ତି, ତମ ନାଁ କହିଦିଅ।
7: ପୁନମ ଜେନା।
6: ଆଉ ତମ ନାଁ?
7: ସ୍ମୃତି ରାଧା।
6: ଆଜି କ'ଣ ଏଠି ତମେ ପରଫର୍ମ କରିବ?
7: ଓଡ଼ିଶୀ।
6: ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛ ଭଲରେ?
7: ମାଗିବୁ ଆମେ ଯେ ଆଜି ଆମକୁ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତୁ, କିଛି ମାନେ ଗରମ ଏତେ ନ ଲାଗୁ, ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢା ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ।

जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सुंदर भाव में आलोचना शुणुले प्रथम केन्द्र रु बर्तमान जगन्नाथ सतरे गोटे मानववाद रात्रा से मानवीय लीला करते मौसी घर पोड़पिठा खाऊँ केते बड़े बड़दाण्ड में रथ सूची सेनापटा लग जिते से धाड़ी पहंडे आसबे ये सबूरी लीला ये विचारधारा कारण जी ब्रह्मांडर नायक जे स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवनर जे कर्ता तांकु बा कौन अगोचर तेणु सी जहाँ करूँ सबू भल कारण सी कौन करूँ समस्ते जापर बुझीपर सर्वंग रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवा नदानाति कुतः मनुष्य तेणु जो जिनटा मनीष पक्ष असंभव से जिनस देवता माने एवं अन्य माने देवता माने जोड़े जानी पर नांदी साधारण मनीष भाव में कम जानी परिवा जा हो वर्तमान आमे जो जगार अच्छु से जगह धीरे धीरे गहली होवार लगी श्रीमंदिर पटु एवं जो अर्ध शोषणी अर्धासनी कथा आलोचना करूथले मौसी मां मंदिर से पाखु धीरे धीरे धीरे धीरे गहली होवार लगी एपटे मौसी मां मंदिर एपटे होती सालबेग समाधि यही एक मध्यवर्ती स्थान रे ये द्वितीय बूथ केन्द्र यामर जहाँ अनुभव जे पाग अनुकूल रही खरा ना कालिया खरा एवं आमर लोकों भितर जो चेतना जो आध्यात्मिक चेतना अंतर्मुखी चेतना से अंतर्मुखी चेतना कौन ना जो चेतना मनीष को शुद्धपूत पवित्र कर दिए जो चेतन मनीष भल हुए से भागवत कहला मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान प्रत्येक मनीष जड़े जड़े देवता मो विचार आज पाप छड़ापुर जिते सब भक्त मान रुंड महाप्रभु दिव्य बाहुड़ यात्रा को देखापे आसुंट समस्ते निश्चित भाव मन भितर हृदय भितर जे निश्चित भाव में दर्शन करूँ मनर कथा कहबू एवं दुख दूर करूँ मनस्कामना पूरण करूँ ये हूँ धर्म एवं ये जगतनाथ जगन्नाथ महाप्रभु जो आदिवासी देवता जो सबर देवता बोली आम आलोचना प्रसंगे कहते आलोचना करूले सत्य कारण ये दईता एवं पति सबर विश्वावस वंशधर एवं एपटे पति महापात्र विद्यापति वंशधर यही दुई वंशधर होकर मूल सेवक एवं यही आसिक महाप्रभु को प्रतिष्ठा कर महाप्रभुंकर स्वरूप ये हृदयस्पर्शी महाप्रभुंकर जो विग्रह ये मन छुआ ताकि चिंता कले आपण अनुभव करें सतरे ओडिया जाति के महान कारण महाप्रभुंकर कलेवर को मु आलोचना प्रसंगे कही महाप्रभुंकर कलेवर को दि भाग विभक्त करदे गोटे हूँ सर्पाकृति मुखमंडल नागचक्षु अपलक नेत्र तल भाग हूँ दंडी खम्ब लिंग जमी गोटे शिवलिंग आउ गोटे शिवलिंग को उल्टे रखीदे जो महाप्रभु जगन्नाथ कलेवर हो जाए से जो दुईट शिवलिंग अर्थात देवदेव महादेव भगवान शिवशंकर जगन्नाथ श्रीमंदिर रत्न भंडार रक्षाकर्ता भाव में जोगवली भाव रही तेणु ये देवता ये अवतारी महाप्रभु जगन्नाथ जे के महान से महानता को प्रतिपादन करने मु वर्तमान मोर बंधु प्रताप त्रिपाठी महोदय को निवेदन करुच्ची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।

0: ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି।
1: जय जगन्नाथ। रथयात्रा अवसर में आपमानंकु हार्दिक शुभेच्छा। लक्ष लक्ष भक्तंकर सुस्थ एवं सुरक्षित दर्शन पाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व्यापक प्रस्तुति करिछन्ते। पूरी बड़दाण्ड एवं प्रमुख स्थान में आठटी अत्याधुनिक दशसज्जा विशिष्ट चिकित्सा शिविर यथा पुरुणा रघुनंदन पाठागार निकट में, नीलाद्री भक्त निवास, जगन्नाथ वल्लभ पार्किंग परिसर, बगला परिसर, मार्केट छक म्युनिसिपालिटी मार्केट कॉम्प्लेक्स सामने, भोलानाथ विद्यापीठ ठारे, बस स्टैंड, रेल स्टेशन मुख्य फाटक सम्मुखें व्यवस्था करा सहित 30 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, प्रत्येक शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स, पारामेडिकल कर्मचारी, ऑक्सीजन, ईसीजी, जरूरीकालीन औषध और 24 घंटिया सेवा उपलब्ध। गुरुतर रोगी मुख्य चिकित्सालय में 300 अधिक संरक्षित शज्ञा, आईसीयू, बर्न वार्ड, ऑपरेशन थिएटर रो व्यवस्था रही। भक्त मानकर तुरंत सेवा पाई 82 आंबुलांस स्वतंत्र करिडर और प्रशिक्षित दल प्रस्तुत अछंती। आपन को सुस्थता आमर सर्वोच्च प्राथमिकता।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिसा।
0: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मु कहतली महाप्रभु ये जो यात्रा टी अनुष्ठित होउची, ये यात्रा रे कौन कौन होउची, भगवान कौन करुचंती। अरे भगवान जो आसुचंती आज तो बहुत अंचल बेग क्षिप्र गति रे महाप्रभु आसुचंती। उपेन्द्र भंज लिखिचंती, पाद नाही से जे गमन करई, कर्ण नाही सब सुणे, चक्षु नाही तार तिनि पुर दिसे, जिह्वा नाही स्वादु मणे। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज केते सुंदर भाव एक कहले, पाद नाही से जे गमन करई। आपण देखुनाहंती वर्तमान आमे देखुथिलु ए जो वर्तमान गोमुट रहितला नाकचणा द्वार सिठु अतिक्रम करी केड़े क्षिप्र गति रे से वर्तमान पळे आसिलेनी राधा वल्लभ मठ रे, मठर जो पार्श्वर्ती अर्थात नाधावल्लभ मठ एवं श्री नंदीघोष यारी मध्यवर्ती जो मार्ग से मार्ग पाखरे से अच्छा एवं सेठी दंडायमान होता नंदीघोष रथ उपरे आउ अल्प समय पर से विराजमान करदे। केते लोक चाहिकरी बस महाप्रभु को तांकर दुर्भाग्य कथा टिके कहवापी महाप्रभु कहते, अरे मु तो से आसी केते कहचु मते मते कहीं कहचु मु पूरा अंतर्जामी मु कौन तो अंतर रे नाही, तू केवल मते मन दे, मजे व मन आदत्स मई बुद्धि निवेशय, तू मते मन दे दे, तू मते बुद्धि दे दे, आउ सब भार मु तोर बहन करी। तेणु मो तू भावुच कि मोर पाद नाही बोले मु चली पार नहीं, मु चले पाद नाही से जे गमन करई, कर्ण नाही सबु शुणे। तुम्हें कह प्रभु आपणकर तो कर्ण नाही, मुझे जिते कहूँ शुणुंट केमी ना रे मुमती एक वस्तु, मुमती एक वस्तु सर्वेन्द्रियाणी सर्वेन्द्रिय वृत्तिमती एमती कौ देवता अच्छे आपण कहले मान जस्येन्द्रियाणी जहाँ प्रत्येक इंद्रिय सबु इंद्रियर काम कै वस्तुपी पश्यति हाथी हाथ देखे। आपण भावे नहीं ये गोटे किंभूत किमाकार प्रभु जार सर्वेन्द्रियाणी जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमती जार इंद्रिय नथिले मध्य जे कौनसी अंग तांकर से सबु अंगर काम करिव हस्तोपि पश्यति हाथ भी देखे तांकर शरीरटी कान नथिले मध्य शुणे पाद नथिले मध्य से गमन करंती।
3: डॉक्टर डॉक्टर दास
0: आज्ञा
3: आमर अति बड़ी जगन्नाथ दास
0: हाँ
3: गोटे भजन अच्छी से भजन टी महाप्रभु सब कथा को कहीदे नवाक्षरी
0: आज्ञा
3: से खाली गाइले तो समय लगे
0: हाँ, खाली कही
3: श्रोता मानी कहीदबा
0: हाँ।
3: नमस्ते प्रभु जगन्नाथ अनाथ हाँ। लोकंर नाथ
0: हाँ।
3: नमस्ते प्रभु वासुदेव भकत जनक बांधव, नमस्ते प्रभु ऋषिकेश भकत जनक विश्वास, नमस्ते प्रभु विश्वरूपी सकल हृदय अछु व्यापी, तू सृष्टि स्थिति लय करू आवर गर्भरे संघरु, अशेष कोटि वसुंधरी तोहरी गर्भे छंती पुरी, 14 भुवने जा किणा ଏ ସର୍ବତୋହର।

0: रचना तु ब्रह्मा रुद्र विष्णु तुहि तुबिनु अन्य गति नाही सृष्टि तोहर खेल घर अशेष माया तो आवर तोहर निश्वास मरुत देवे होइले तहु जात आपण शुणु थांतु तुहिटि अग्नि देव इंद्र नयनु जात सूर्य चंद्र तो नयनरु सूर्य चंद्र जात होइचंति भुजरु अनंत मूर्ति कंठरु जात सरस्वती सदा चंचल निद्रा नाही एरूपे शून्य सदा चंचल निद्रा नाही एरूपे शून्य अछु रही अशेष तोहर महिमा के जानी पारे गुण सीमा तो नाम करुथिले लय कोटिए जन्म पाप क्षय नाम घोषिले सर्वसिद्धि खंडई रोग शोक आदि आरत भंजन तो बाना आतंग काले वज्र सेना होइलु दश अवतार नासिलु अवनिर भार दुष्ट निवारी संत पालु तुनाथ परम दयालु तु अटु दरिद्रंकर धन तोपदे रहु मोर मन सती जुवतींकर मने निजर स्वामी थांति जेने सही प्रकारे मोर मन तोपदे रहु भगवान कहई जगन्नाथ दास कमल चरण को आस आपण जहा जहा कहिले वेद वेदांतर सबु कथा गुडाक जगन्नाथ दास नवाक्षर वृत्तरे केडे सरल भावरे लिखि दैछन्ते
1: सेहिते पे गीतारे कहिछन्ते प्रभु कहिला अरे मु किछि मागुनी मजेव मनाधस्व मय बुद्धि निवेशय मते मन दे ते कथा को शेषरे से कहिले सती नारी ता पति पाखरे जेमिति मति को बा मन को निश्चल करि रखे हे प्रभु आपणक पाखरे मो मनटा अत्यंत निश्चल हेकि रहु तेणु मो मन
0: तेणु एबे श्रोता बंधु माने टिके मने कर मने पकांतु जदि पति हेतिबे मने करंतु नहले पत्नी हेतिले भी मने करंतु पत्नी जेमिति पति कथा सब बेले विचार करे जदि से सच्चा पत्नी हेथाए सत्पतिव्रता हेथाए पति पति प्राणा हेथाए सीए जमी सब बेले पति कथा भावे एवं पति जदि प्रकृत रे पत्नी प्राणा हेथाए सीए जमी निजर पत्नी कथा सब बेले भावे से भली भगवान कहते तु पति पत्नी भली पवित्र भाव जदि मो प्रति मन लगेबु मु तोर सकल दुख को दूर कर दे
1: भगवान केते बड़ा आश्वस्ति करचंती अनन्यास चिंतयंतो मां जे जना पजुपासते तेसा नित्य विदुक्ता नाम योग के मंगवाम्य हम जे को अन्य पतिव्रता नारी कौन करे तार मन टे तार पति टे ता मन को गोटे पति पाखरे जेमि से निश्चल करि रखि दे सेमिति भगवान कहते जो व्यक्ति निजर मन को अन्य कौन सी जगह न दे अनन्यास चिंतयंतु मां कौन सी जगह न दे मोते केवल प्रदान करिथाय मते चिंता करुथाय मु तार दीटा कथा बहन करे तेसांग नित्याभिजुक्ता नाम नित्य अभिजुक्त से ही व्यक्ति मानू मोर जोग क्षेम बहाम्य हम कौन या अर्थ जोग माने कौन क्षम माने कौन जोग कहिले अप्राप्तस्य प्राप्ति ही जहाँ तो जीवन रे पाइनु मु तते प्रदान करी आउ क्षम माने कौन प्राप्तस्य रक्षण जहाँ तते मु दुर्लभ जिनिष देली ताकु सुरक्षा करी जल को 5 कोटी टंका देकर आम निश्चिंत बसी पारानी जदि टिके बा माने लीक हेगला तेब निश्चित भाव ता मुंडटे कटिज तेणु भगवान कहले मो दुर्लभ वस्तु दिए एवं ताकु सुरक्षार भार मध्य मु निए
0: जो योगक्षेम कथा कहले अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति एवं प्राप्त वस्तुर रक्षण तेणु आम को भगवान बहुत कथा देले आम ताकु धारण करवा आम ताकु रक्षा करवा निज भितर सब बेले से भावन रहा सेटा आमर हुए ना कारण आदि पवित्र भावना आसुची काली से भावना चली जाऊँ तेणु भगवान कहते तु जदि अनन्य चित्त होकरी मो सहित रहीबु ताहले तते मु अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति मध्य करेबी एवं से प्राप्त वस्तुटी को तु किभली धारण कर रखिबु ते शक्ति मध्य तते देबी
1: देबी जहाँफल तु निश्चिंत होइजिबु केते बड़ कथा तेणु आम को निश्चिंत करदे निजे कहते ये सबू सत्वे एवं निजे आसुचंती निजे आसिकरी कौन करचंती कहले अरे मोर केतोटा यात्रा रे तू आ

0: दोळेच दोळगोविंदं चापे तू मधुसूदनं रथे तू बामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म नविद्यते। जदि दोळयात्रारे मुँ दोळगोविंद होइकरि जेतेबेळे दोळबेदीरे झुलुथिबि सेतेबेळे मते टिके दर्शन करिबु। आउ चापे तो मधुसूदनं जेतेबेळे चाप होउथिबो चंदन यात्रा होउथिबो मु मधुसूदन होइकरि बसिथिबि मोर उभय पटरे श्रीदेवी भूदेवी थिबे मोर आगरे आउ गोटे चापरे रामकृष्ण थिबे पंचमहादेव थिबे चापरे आमे बुलुथिलु एही बेळेरे मधुसूदन रूपे मते जदि तु दर्शन करिबु मुक्ति लाभ करिबु। आउ गोटे कथा रथे तु बामनं दृष्ट्वा जेतेबेळे रथयात्रा होउछि प्रतिवर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि आरंभ कर दशमी तिथि पर्यंत जो नवदिनात्मक जो यात्रा होउछि से यात्रा रे जेतेबेळे मु बसिथिबि बामन होइकरि आषाढ़े बामनं चैव आषाढ़ मासरे मु होउछि बामन। आपण माने जानती बार मास जाक महाप्रभुंकर भिन्न भिन्न नाम रहिछि सेथिरु आषाढ़ मासर नाम होउछि बामन। तेणु बामन रूपी मते जदि तू रथरे दर्शन करिबु मते मुक्ति लाभ करिबु केते आश्वासना। एते सबु सत्वे आमे संसार रे एते व्यापी करी रहिचे संसार को निजर बोली करी मने करिचे आ भगवान को भूलिचे जहाँ फल कृष्ण भूली यही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दहे संसार दुख। आमे कहीं संसार दुख दुखी अटे ना आमे कृष्ण को भूलिचे जगत जगदीश्वर को भूलिचे कृष्ण भूली यही जीव अनादि बहिर्मुख आमे समस्ते बहिर्मुख हो जाइचे। तेणु माया अतएव माया तार दहे संसार दुख तेणु माया आमको दुख दौची। आउ मन रखि था जो घंट बाजु नहीं आपण देखु तु मान भगवान कहते तु आसबू रथ जात्रा रे मोर घंट बाजुची भो भो शब्द होन कहूँ घंट पातक मानक कहूँ पड़ा तु अठर नला ठार बड़ी न आसबू आणिकी कह जो घंट बाजिकी जमती आम गोटे माकड़ बसते घंट बजेकर मानते दूर को मान ये करदे हाउ घोड़े दौता घौड़े दे था सेमती घंट बाजु नहीं जे कवि कहते ये घंट बाजिकी कौन कहती ये पातक ये पाप तु आउ अठर नला डेकिपट को आसबू नहीं तेत घंट बजेकरी मु बाहर को बाहर करदेली हाँ पड़ा तु अठर नला ठारू बड़ी न आसबू आउ एणीकु गौरचरण लिखिचंगुड़ाक
1: तो कवि मानकर अनुभव कथा से माने लिखिंट किंतु मोटामोटी कथा आम जिते कथा कहचे ये कथार जो मूल एवं सार कौन बोली आम कह श्रोता मैंने पचारे आप सका सन्ध्या पर्यत कहले सका साढ़े आठ रू आरंभ कर पांचटा पर्यंत आप कहले सार कथा कौन जमी महाभारत अठर पर्व महाभारत सार कथा कौन बोली पचार कहले पापाय परोपकाराय स्वर्गाय
0: पुराणेषु व्यासस्य वचनं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्
1: सार तेणु यहाँ जमी सार आमर महाप्रभु संपर्क में जिते बरणी आम दौचे से बरणी सार हूँ ये परमात्मा प्रति अखंड विश्वास
0: ये पूरा कहले गीतारे अरे अर्जुन तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थान प्राप्त शाश्वतम।
1: तेणु परमात्मा आपणकर जो दुईट कथा किसी समय तले आमर डॉक्टर कल्याणी नंदी कहते श्रद्धा एवं विश्वास कथा श्रद्धार शास्त्रीय अर्थ कौन ना शास्त्र एवं गुरुवाक्य विश्वास यहाँ है श्रद्धा एवं श्रद्धार गोटे लौकिक तार अर्थ हूँ जे आपण मते श्रद्धा करती मु आपणको श्रद्धा करे ये मध्य गोटे अर्थ आ गोटे हला विश्वास ये जो बड़ ठाकुर बलभद्र रथरे जोड़िए शुआ अच्छा ओलट शुआ ताकू आम जो ना देते श्रद्धा एवं विश्वास से श्रद्धा हूँ आम जिते जिते आम शास्त्र मानक कथा आलोचना करुचे ये धारा बरणी भितर स्कंद पुराण कथा कहचे नीलाद्री महोदय कथा कहचे रामायण महाभारत कथा कहचे।

0: ये प्रसिद्ध कवि द्वितीय युगीय कवि दीनकृष्ण दासंक रचना यार उपर मध्ये आपण टिके कहिबे जदि आउरी बढ़िया हबे
1: दीनकृष्ण दास जी जगन्नाथ को निकट रे इजोको समर्पित करि देथिले एवं तांकर जो रस कल्लळ से प्रभुंकर से लीला को नै वर्णना करिथिले से दीनकृष्ण दास जी रीतिजुगर कवि जहाँ रीतिजुगर जो आद्य कवि भाव आम ग्रहण करवा ओडिया साहित्य दीनकृष्ण दास होती से आदि कवि जी ऋतुजुगर प्रभु से भाव चौदह भुवन जी बार्ता जाणी आज समग्र विश्व को से मधुरता प्रदान करी जे रससिंधु जेपरी आज से तट प्रदेश को ग्रास करुची ठीक से हीपरी प्रभुंकर जो मस्तकर जो टाहिया आज दोड़ामान होती से टाहिया आज समग्र विश्व को से चतुर्पर्ग प्रदान करपेन्द्र भंज से कम्बु कटक राजा नामे जगन्नाथ चारि बने चौवर्ग देवा समर्थ प्रभु होती से चतुर्पर्ग प्रदानकारी जो चतुर्पर्ग प्रदान करी वर्तमान टिके रही जाइछंती पचारुथिले आज काहेकि मते टिके पूर्वर जणे बंधु पचारुथिले आज प्रभु काहेकि विलंब करुछंती अरे प्रभु विलंब करुनांती भक्तक पाखरु जेतेबेळे आसुछंती से हली हली आसुछंती पुणि चैतन्य महाप्रभु गोटे सुंदर कथाटिए मध्य लिखिछंती विश्वम्बर जगन्नाथ के चलाइते पारे आपना इच्छा है जले करित बिहार ए प्रभु को किए नब किए तांको धरिब किए तांको टाणिब निजे तो प्रभु आज आसिछंती बिहार करुछंती आनंदर जाता जो यात्रा होची पति तपापन यात्रा सुंदर भाव रे अच्युतानंद दास कहिछंती अनंत कोटि ब्रह्मांड जार गर्भेली न जापादे चिंतन्ति जोगी ध्याने होई मग्न जहाँ करुणा करु तुहि भाव ग्राही तो पादे पद्मरे सिए बिलीन हुआई प्रभु आपण होउछन्ति अनंत कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर विश्व नियंता त्रिभुवनर पति आपण प्रभु जहाँ को करुणा करिबे समग्र विश्व आपणंकर बिना निर्देश रे पत्र टी हलिब नाही सेई प्रभु आपणंकर इशारा रे आज ये जो यात्रा होची गुंडीचा नामे यात्रा जी होची ख्यात होची गुंडीचा यात्रा नामे ख्यात परम पावनी रथ यात्रा नामे
2: शुणुले शखक्षेत्र पुरी ठारे अनुष्ठित महाप्रभु श्रीजगन्नाथ पवित्र
3: शखक्षेत्र पुरी ठारे चलित बर्ष अनुष्ठित होता पवित्र बाहुड़ा जात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारावरणी रिले कलु आकाशवाणी कटक केन्द्र बाहुड़ा जात्रार धारावरणी पुणि शुणिपारे दिन दुईटा बाजि पंद्रह मिनिट्रे रिले करिबु आकाशवाणी कटक केन्द्र
2: गोटाए बाजि पचास मिनिट हेबाकु जाउछि प्रथमे ओडिया एवं परे परे इंग्राजी रे संवाद रिले करि प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली रु प्रथमे शुणन्तु ओडिया रे संवाद आमो केन्द्र रु

0: प्रभु मो मागु नहीं धन मागु नहीं मो राजपद मागु नहीं प्रभु एतिक केवल करुणा एतिक केवल मो ऊपर आशीर्वाद र बारिधारा टिए देई थांतु प्रभु मु जेते दिने पर्यंत थी आपणक निकट रे से सेवा को करूबि से मार्जना कार्य करूबि जो मार्जना भितर रही एक द्योतना जो द्योतना भितर रही समग्र संसार से सुख को समर्पित करिबार भावना इतिहास साखी ए देशर राजा केते उत्सर्गीकृत भावना तांक भितरे प्रभुंक निकटरे से उत्सर्गीकृत भावना भितरे गोटे आम सूचना देवाक चाहूँ से प्रभुंकर सेवा कार्य बड़ भाई बलभद्रंकर चलती विष्णु वर्तमान समापन करने को लगे आवल आशीर्वाद भिक्षा करने आशीर्वाद से प्राप्ति स्वरूप पुष्प माल्यटे प्राप्त करे आपटे प्रजावत्सल जो रही समस्त श्रद्धालु तांकु से प्रभुंकर सेवा जहाँ कर सारी जो आशीर्वाद तांकु से समर्पण करेंगे किंतु से समर्पित भावना नहीं प्रभु निकट में आज को बहुत दिन धरी जी सेवा करुछंती नर्तकी भाव नर्तन भाव से नृत्य निपुण कलार प्रदर्शन कर प्रभु निकट निज जीवन को समर्पित करम निकट में पहुंची पिलाटी दिन सी आकाशवाणी गोटे शिशु कलाकार भाव ताहा सेवा प्रदान कर प्रभुंर यही अनुभव अनुभूति सेवार समर्पित भावना को जानिबा तांको नाम होची डॉक्टर चित्तरंजन साहाणी महोदय तांको पाखुक आम नहीं जाऊ से प्रभुंर से भाव अनुभूति को टिके आम मान पहुंचे
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कौन आपण मानक अनुभूति कह आज गत दिन मानक आप जो वर्षा देखुले आम भावुल वर्षा हाब ये पिचि पिचि ये मेकअप छाड़ी केमी नाचबू सांते तुम्हें तो गिलाप पिंधिकी आसला आम केमी नाचबू आम केमी तम सहित रहीबू तुमको जो मुहटा को सजबाज हो देखू केमी आज सुंदर भाव महाप्रभु पगटे करदे कि बड़ कथे जो आज देखिली दी भाई भौणी पलि आसे बड़बार मणिमा हरिद्रा मणिमा सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन पलि आसे ये कालिया सांत आसिले आहा मु देखु थाए जिते बड़े रही जाऊ नाकचना द्वार पाखे रही जाऊ आसुन था विकल हो नाचु थाए प्रभु तुम्हें टी देखी दियो तुम्हें टी अन दियो यही समय मु हटात देखु थाए जे गुंडीचा मंदिर रास्ता आ श्रीमंदिर बैश पहाच पूरा अलग अलग कथा ये समतल रास्ता जो दी आसु था हटात जो झका टे दौ था दईतापति सेवक मैंने जो पहंडी करते ठाकुर पछुक होती टी आग को टाणु था देखु था आखिरे अनौ था विस्फारित नेत्र मत लगला मो छड़ा सी क्या देखुना मत ही देखु

0: आड़कु मुह करी दौड़ुछन्ति एहार अर्थ हेउछि सेमाने जानिबा दरकार आम आगरे केते श्रद्धालु रहिछन्ति आमे बा रथर स्पर्श आमे बा रथ दौड़ीर स्पर्श किपरि पाहिबु किंतु केही किछि बुझिबाकु नाराज काहीकि ना गोटे कथा रही भक्ति भगवान ये दुईटी कथा छड़ा कहीं आउ किसी जानती ना तेणु पाद आग को टाणी नौ जानी नाते बाट चलिए
1: बर्तमान ठाकुर जो बड़ संघ पाखे अटकी जाती बर्तमान भावुंट ठाकुर जे मो सान भाई मो भौणी कौटी अच्छा तेणु से आसिले मुझे जी तेणु बड़ भाई सान भाई प्रति जो स्नेह ममता आमर ओडिया घरे अच्छी क्षीर जदि खाई बसबू घरे थी गाई युद्ध जदि कर बसबू संगे थी भाई तेणु भाई भाईर स्नेह ममता बोधे भूली पार ना तेणु बड़ ठाकुर तालध्वज रथ अटकी जाऊँगी
0: जौथ पर वैकुंठ समान आहा अटे से ही घर
1: परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर
0: से जौथ परिवार रो सूचक से जो वार्ता को महाप्रभु विश्ववासी उद्देश्य आदि भाई भौणी सहित आसी जनई देउछंती मु करबी गुप्त गुंडीचा मु जते कथा अंगीकार करबी कबाट पड़ी जीव पछे नीलाद्री विजय दिन जी मत जहा भावु किंतु गोटे परिवार रो कथा को मु पछरे पकाई पारिबे नाही महाप्रभु आज केड़े सुंदर दिव्य लीला लगैछंती ए बड़दाण्डरे प्रकृत रे अनुभव हेउछि सेदिन रो लेखा आज दृश्य पतित पावन अर्थे प्रसाद बाहर महाप्रभु आपणकर जो घोष यात्रा आपणकर बाहुडा यात्रा अति आनंद परिपूर्ण श्रोता बंधु आपण मानू वर्तमान ए द्वितीय केन्द्र आम फेरे नौ श्रद्धा बाली को जो थे श्रद्धा वितरण करेंगे आम घोषक मान
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
2: जय मा देवी सुभद्रा जय जगन्नाथंकर महाप्रभुंकर जो बड़ भाई वर्तमान आगेरे गले बढ़िया कहते माँ सुभद्रा को बासिले पोड़पिठा मौसी करी अपेक्षा सुभद्रा भौणी जगन्नाथ को बेगी बेगी उठा से सहल सहल नीति वर्तमान से मौसी माँ मंदिर अभिमुखे बड़ भाई बलभद्र चलिले आर्षार टिके टिके बारिपाद वर्तमान अनुभव है यार भितर आम देखिपु प्रशासनिक स्तर में आउ गोटे सुंदर व्यवस्था जमी भक्त मानकर मस्तक बर्षार जल न तिंतीवाई सुंदर भाव गोटे गोटे जो जरी मध्य समस्त को वितरण करते से जरी को टाणी ओटार नहीं जाती प्रभुं प्रसाद परी किंचित आम मान भ्रम सृष्टि सते जपरि प्रभुं प्रसाद पाइबापी गोटे चली प्रतिजोगिता किंतु वास्तव में ता नुहे जरी खंडिये नहीं समस्ते निजर मस्तक पिंधुंट आपटे प्रस्तुत हेले माँ सुभद्रांकर रथ जो रथरे रोचिका मोचिका जीता अपराजिता नामक चारिगोटी जो अश्व ता जोचा सरला डाहुक अति सुंदर भाव दुईपटे घोड़ार रही बेत को धरी वर्तमान समस्त श्रद्धालु भक्त को सी बाजिला विजय कहाली घंट घंटुआंकर से घोर घर नाथ जोग माया महादेवी महामाया नमस्तुते ईश्वरी अंग भंजनम ब्रह्मस्थान स्थिता सदा से जीव चैतन्य ब्रह्म चैतन्य को जी एकत्र बंधन बांधि पारती से माया हिरण्य गर्भ सम्भूता सी हूँ से निर्लिप्ता माँ जगज्जननी सुभद्रा रथर से घंटुआ मानकर घंट नादरे भक्त माने जदियो से दौड़ी जहाँ शंख चूड़ नामक जो रज बंधा जाइए ता जगन्नाथ रथ से आई स्वर्णचूड़ नामक जो रजु ता टाणी आनी कि समय पर रही जाता पुनर्बार घंटुआर घर घर नाद से घंट नाद से माँ चली आसुंची देवी देवी शक्ति दर्प दलन करी समस्त आसरिका प्रकृति को जी दर्पित भाव दलन कर जगज्जननी देवी सुभद्रांकर रथ सुंदर भाव शरधा बालीर प्रांगण से आग को गड़ी जाऊ गड़ी जाऊंट भक्त माने आनंद शरधा बालीर से धूली को मस्तक अर्पण कर माँ ए संसार को तुम्हें ढांगी रखी था तुम पणत कानी ए संसार समस्त भक्त आपणकर पुत्र सदृश आई समस्त जनता समस्त भक्त को आपणकर से कारुण्य पाथ निधि आपण परा होती जोगी आपण होती से त्यागी आपण होती जय देवी जगत माता।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୋଡା। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक

0: पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी संबलपुर शुणन्तु संबलपुरे मुख्य संवाद।
3: आकाशवाणी संबलपुर आज मुख्य खबर संगे मुई बंदिता मिश्र। भक्तिमय परिवेश भित्रे आज पुरीठाने अनुष्ठित हेउचे महापुरुमानकर बाहुडा जात्रा। नौ दिन रा श्रीगुंडीचा जात्रा सारिकरे आज श्रीजीव जन्मवेदीनु फिरुचन रत्नवेदीके। आयबाका रथ उपरे सुनावेश थी लक्ष लक्ष भक्तंकु दर्शन देवे चतुर्धा मूर्ति। आयबार रविवार मन की बात कार्यक्रम थी देशवासींकर सहित भाव विनिमय करबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मिलनी कक्षन एआई डाटा सेन्टर पार्क विश्वस्तरीय जोगाण केन्द्र थापना लगी एचसीएल टेक सांगे गोटे बुझामणा पत्र स्वाक्षर कले राज्य सरकार। देशर अर्थनीति और विकास प्रक्रिया थी आयकर गुरुत्वपूर्ण अवदान विषय थी लोकंकर भितरे सचेतनता सृष्टि उद्देश्य थी आज पालन कराउछे जातीय आयकर दिवस। पवित्र आषाढ़ मासर दशमी तिथि ने तीन महाप्रभुकर बाहुडा जात्रा सुवर्णपुर जिलार पाताली श्रीक्षेत्र सहित जिलार भिन्न भिन्न जगाने अनुष्ठित। बलांगीर जिला ने आज विभागीय कार्यक्रम सरकारी योजनार व्यापक प्रचार प्रसार आउ जिला सूचना और लोकसंपर्क कार्यालय समीक्षा कले विभाग जुग्म निर्देशक। शतायु स्वाधीनता संग्रामी बिम्बाधर मुदुली मृत्यु ने शोक प्रकाश कले राज्यपाल मुख्यमंत्री। जम्मू काश्मीर ठाने लगातार वर्षा होउथबानु शनिवार दिन अमरनाथ यात्रा सहित सबु यात्रा के स्थगित रखला प्रशासन। झारसुगुड़ा जिला ने एसआईआर 2026 अंतर्गत पोस्ट ड्राफ्ट कार्यावली समीक्षा कले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ अधिकारी। आज बंद है हीराकुद डैम्र चारटा गेट यहादे बारटा गेट देकर छड़ा जाउछे बढ़ी पैन आउ समुद्र अशांत रहुथिबानु समुद्र भितर के जिबार के मत्स्यजीवी मानकु मना कला पाणीपाग विभाग। 50 नु 60 किलोमीटर स्पीड ने पवन बुहिबा आउ अशांत रहबा समुद्र बोली कालठानु आयबा 27 तारीख तक सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एचनीर मुख्य खबर इनसेसला जुहार।

0: ଆକାଶବାଣୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ।
1: मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
2: सबसे बड़ी खास बात है इस कार्यक्रम की वो यही है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत अनौपचारिक होकर बातचीत करते हैं।
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
3: पूरा देश पूरा लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके अनुभवों से वाकिफ हो रहे हैं।
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
4: जब भी रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम शुरू होता है सुबह से ही हम सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं।
1: श्रोताओं, आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप में पोस्ट कर सकते हैं।
5: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है।
6: सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सुनल?
1: हाँ बहु, बढ़िया लगला।
0: महाप्रभुर भजन परे जनता कले हेले मनटा औसत लागसी।
1: बोले बहु मते कह तो बैठकी के आसलो जे केनता लागला जे?
0: ओय लागला गोबुई, ठीक कहुतले बरखा दादा घरे जा जे पांचटा कथा जानबू बोलिकिरे।
1: बोले मोर बहुटा सियानी हो गले न बोलो।
0: हय केनता करबो, पनीपरिबा ई लोक हेले दुई दुईटा करी ना करले हबा बोलच।
1: हाँ तो बेले समिया देखुछ कि नहीं?
0: हय गो, मोर हाड़के निघा नहीं।
1: बेले जिमा।
0: हो जिमा से।

0: କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂସଦ ସମୀକ୍ଷା ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के

आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देशभर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में

0: कॉलेज एमबीबीएस शिक्षा के लिए एनएमसी विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारी सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: শুনুলে সংসদ সমীক্ষা রিলে কল আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র আকাশবাণী সম্বলপুর বর্তমান প্রচার করছু এনসিইআরটি দ্বারা প্রায়োজিত কার্যক্রম

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की। आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ी

0: तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा।
1: जी
0: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
1: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
0: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है।
1: जी
0: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
1: जी
0: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गाँव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
1: कैलपौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
1: कैलपोद उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओं, कैलपोद उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
1: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोद उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैलपोद उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है?
0: 8800-440-5599 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही।
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
4: वाह,
3: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर है। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
4: ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
3: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
4: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
3: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
4: हैं? वो कैसे?
3: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
4: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
3: वो कैसे?
4: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
3: भाई वाह।
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
3: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
4: ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
5: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
4: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
3: हैं?
4: हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
5: मैं क्योटो देखूंगा।
4: और मैं ओसाका।
5: क्यों नहीं, चलो
4: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
3: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
4: चलो
3: संभल कर।
4: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
5: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
3: ये क्या?

0: क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है। अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
1: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
0: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
1: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
0: हाँ चलो।
2: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
3: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है।
4: जी,
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो

0: गैर कानूनी है ये
1: है?
0: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
1: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
0: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
1: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
0: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
1: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
0: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
0: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
0: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानूं या ना जानूं, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूं। बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
1: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
0: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
1: नमक का मोल पूछने।
2: आइए जनाब, आप इधर आइए। हाँ, ठीक है।
1: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
1: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी जब पाकिस्तान बना

0: तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: अब जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
0: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। पर हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, खाइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
4: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
4: माफ कीजिए, चाय पियेंगे क्या आप?
0: नहीं,
4: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
4: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है, किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
4: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: सुनुथले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲି କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
4: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
2: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
6: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
2: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
7: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
8: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both Houses of Parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
10: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
9: Spokesperson of CJP Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the third and fourth rail line of Bellary-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian railways by about 46 kilometers. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka.
11: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन.
12: टुडे अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ रेलवे लाइंस बिटवीन गुंतकल एंड बिल्लारी. फर्दर अहेड द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द थर्ड एंड फोर्थ रेलवे लाइंस बिटवीन हॉस्पेट एंड हुबली इज ऑलरेडी अंडर प्रिपरेशन. दिस विल क्रिएट अ कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर इन नॉर्थ कर्नाटका कनेक्टिंग बोथ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. द प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 years.
11: और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है.
9: Mr. Vaishnaw also informed about Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in the country.
13: Second
12: is the Bhavya scheme. In the economy, there are certain industries that are foundational in nature, and the chemical industry is one of them. The basic theme of the Bhavya scheme is to develop plug and plug chemical parks. This is a time-tested strategy that

0: ଖେଳଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନା ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ରଥ।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
2: सबसे बड़ी खास बात है इस कार्यक्रम की वो यही है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत अनौपचारिक होकर बातचीत करते हैं।
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
3: पूरा देश पूरा लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके अनुभवों से वाकिफ हो रहे हैं।
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
4: जब भी रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम शुरू होता है सुबह से ही हम सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं।
1: श्रोताओं, आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप में पोस्ट कर सकते हैं।
5: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है।
6: सुबह 11 बजे मन की बात।
7: ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କିଷାନ ଉପଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା କିଷାନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଷାନ ଉପଭାଷାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ନାତକ ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

0: कमली कमली
1: मो मु परा तमरी फेरिला बाटू के दांड द्वारे ठिया है जी तमु कोन दिसुनी
0: हां हां सतरे मु अंध हे जाई छी कमली
1: अरे अरे अरे घर भीतर कुआडे पसी आछो पुरस्तमुरु आसी छो पोखरी रु मु हात गोड़ धोई आस नुआ हांडी रे जाऊ पुरुणी साग कर रखी छी ताकू आगे तुंडे रे दियो तापरे गपिबो आ मु सब सुनिबी
0: हां हां तमे ठीक कहिछो कमली मु पोखरी रु गाधे आछी तमें खावा को बाड़ ये कौन है कमली ये जे सही चक्का डोला ओ प्रभु।

0: कमली कमली
1: मते डाकुथिलु
0: हाँ कमली आज कहीं कि सोल सोल भूक लगला से तंत छाड़ी पोखरी रु गाधे आसली कौन टे खाया को देलो
1: खाइबा को देबी
0: हाँ खाई सारी नंद पंडित लुगा खंड को नहीं घरे दे आसबी से कार्तिक हविष्य करने श्रीक्षेत्र जी
1: हौ निय मत क्षमा कर केते दिन हैला मु पानी पी चल जाऊ थी आज तुमक भी गड़िया पानी दबा को हैला
0: से दुख कहीं कमली ये गड़िया पानी से गंगा जल से मोपाई अमृत
1: छी सेमती कहने तुम घरणी है भोक बेले जो मुठे बाड़ी दे न पारली आ ये घर अच्छी कहीं
0: से तुम किसी दोष ना कमली मु सबुले पोथी लेखार मतिली समय पाइले रुगा बुणारे लगिली तुमको चाउल मुठे दे सीना तुम भात रांध को जमी बाड़ी अच्छी अमार रु धान काटी तुम चाउल कर
1: तो पुनी घरणी हिसाब से तुमको चेतई दे था किंतु
0: कह कमली
1: पोथी लेखा बेले तुमको चाउल ना बोली कहवाप मो तुंड खोले उड़ी उड़ी तुम पचर ठिया तुमको देखे कहबी बोली भाव न कही चुपचाप फेरी आसे
0: हो दुख करनी कमली आज नंद पंडित घर लुगा दे चाउल दी मैंने आनीमी तुम्हें भात रांधिब
1: नंद पंडित काली आसते लुगा नापी
0: जाने कमली बराद थिला दासिया निधि सामंत लुगा पूरी खंडे लुगा बुणी दिए बराद अनुसार लुगा खंड जतन बुणी आज लुगा देखिले से निश्चय खुशी हे
1: मुझे चूली पा हाँ बसईदेवि
0: रुह रुह कमली मु लुगा दे फेरी आसे चूली हाँ बसईब
2: कार्तिक मासरे वृद्ध ब्राह्मण को किछ दान कर दाता
0: दान एटा खदाल घर ना
2: क्षुदार्थर चंडाल ब्राह्मण भेद ना बाबा मो खूब भोकिला श्रीक्षेत्र चली चली आसुचे दिन गड़ी गलानी किछ आहार दान कर दियो बाबा
0: आहार मुझे अछुआ नीच बाउरी जातिर लोक ना मो घरे तुम्हें आहार ग्रहण करिबो किपरि
2: काहेकि बाउरी कौन मनुष्य नुहंती बाबा मनुष्य भितर पुणी छोट किए बड़ किए उच्च किए नीच किए निजे श्री जगन्नाथ तो सबर अंटाखिया देवता ताक देश में पुणी जातिभेद

0: ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11ଟା।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हिंदी रे संवाद शुणुले रेलकोलु आकाशवाणी दिल्ली आकाशवाणी संबलपुर शुणु संबलपुर मुख्य संवाद
4: आकाशवाणी संबलपुर मुखिया खबर संगे मुई कृतांजलि त्रिपाठी। प्रश्नपत्र प्रघट आउ परीक्षा समिति अनियमितता अटकाबारके फास्ट्राक कोर्ट स्थापना के नेकरि चिठा बिल्के केन्द्र कैबिनेटर अनुमोदन। देशे तीनटा रासायनिक पार्क प्रतिष्ठा लागि भव्य रसायन योजना के मिलला मंजूरी। नूआदिल्ली केन्द्रमंत्री जेपी नड्डा डॉ जितेन्द्र सिंह आउ सीजेपि प्रतिनिधि दल भित्रे हेला आलोचना। पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद के समर्थन बंद नहीं करबार तक स्थगित रहा सिंधु जल चुक्ति फटिक कला भारत। भिन भिन प्रसंग के नेकरी विरोधी दल सदस्य हो हल्ला जारी रहीबारनु संसद दुई गृह आयबा सोमवार तक हेला मुलतवी। बाहुड़ा जात्रा थी आज पूरी सिंहद्वार न पहुंचिले बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ महाप्रभु रथ आयबा काल रथ उपरे सुनावेस्ती भक्त मानकु दर्शन देबे चतुर्धा मूर्ति। राज्य प्रतिष्ठा हेबा ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर आउ एआई पार्क सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ती नुआ विप्लवर हेचे शुभारंभ कहले मुख्यमंत्री। राज्य सार्वजनीन ईवी चार्जिंग स्टेशन रो विकास लागि पीएमई ड्राइव के केन्द्र सरकार कर मिलला मंजूरी। भारतीय रेलरे यात्रीमानकर सुरक्षा के सबुठानो जह प्राथमिकता दिया जाउछे बोली कहिछन रेल मंत्री। भारत और रोमानिया भितरे अर्थनैतिक आ पुंजीनिवेश संपर्क के बढ़ावा लगी आह्वान देले राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री आइबा रविवार दिन सकाल 11 बजे आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम जरिए देश आ दुनिया सारा लुक्कर संगे करबे भाव दियानिया। देशर अर्थनीति आ विकास प्रक्रिया थी आयकर गुरुत्वपूर्ण अवदान बाबदे सचेतनता बढ़ावार लगी आज पालन कराउचे जातीय आयकर दिवस। संबलपुर सहित पश्चिम ओडिशार भिन भिन सहर आर गांव आज अनुष्ठित बाहुड़ा जात्रा। ग्लास्को राज्यगोष्ठी खेल में भारत संतरणकारी श्रीहरि नटराज 50 मीटर बैक्स्ट्रोक सेमिफाइनाल के हेले उन्नीत। और आबा 24 घंटा भितर 24 जिला के वर्षा संगे चड़क मारवाके नेकरि सतर्क सूचना जारी करछि पानीपाग विभाग। हीराकुद जलभंडानु यहादे 12 गेट देकरि छोड़ा जाउछे बर्ड पैन। आज मुख्य खबर इनु शेष हला। जुहार।